0: ए वही बढ़िया साहिब ओकरो के सही करे नहीं क्या कर ओकर के साहिब ना कबूल सवा चाले ट्रेन ई करा हो
1: व्हाट इज दैट टू हाई से प्रोग्राम
0: Uriza enteka zaito ayatumaise program ikaraho
2: Oli hatumaise program